0: इस समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कनाडान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपनी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक सभ्यतावत और आध्यात्मिक संबंध है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापार व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समिति ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। वहीं 2026 के एशिया खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम

0: डोप में सामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भोज प्रस्तुत करे विचार बिंदु परिवर्तन पठन अवनी द्वारा

취한 거니 그런 거 이제 매드립스 이제 하지 않았어라. 막 되게 생리? 아니, 하네. 생리는 아슬레이션.

आकाशवाणी निर्देश केंद्र पर थे आप सभी का यशो भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना हमारे साथ में भावेश पंडित नयास वर्मा मूलदास ने रचना संभाली हाँ पशी में भक्ति गीत प्रस्तुत है देवजी वलजी महेश्वरी नयास वर्मा रचना है मीराबाई।

शक्ति वाले भगवान से मोक्षित लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान लंका के वैद्य सुशील को उनके घर समेत उठा रहे हैं। औषधि है संजीवनी बूटी। पर्वत का जहाँ वो मिलेगी नाम सुनकर पवन पुत्र हनुमान श्री राम का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। गुप्त चरण से ये संवाद सुनकर रावण चिंतित हो जाता है और कालमेनी नामक राक्षस को हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजना चाहता है। कालमेनी पहले तो रावण को संबोधि देने का प्रयास करता है। भगवान का त्याग कर महामुनि के निद्रा त्यागने की बात कहता है, किंतु फिर रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत द्वारा मरना श्रेयस कर जाए मूल रूप धारण करके पवन पुत्र के मार्ग में माया रचना करता है। प्यास बुझाने के लिए हनुमान मुनि के संकेत पर सरोवर पहुँचते हैं, जहाँ नगरी के रूप में उपस्थित अप्सरा उनके पैर पकड़ लेती है। हनुमान उसका वध कर देते हैं। स्वर्गारोहण से पूर्व वो मुनि रूपी कालमेनी की वास्तविकता उन्हें बता देती है। कालमेनी का वध करके हनुमान पर्वत पर जड़ी न पहचान सकने की स्थिति में पूरा पर्वत ही उठाकर लंका जाते हुए अयोध्या

समूहेषु विपणौ प्रतिशता 98 मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमति भविष्य। श्री गोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्य श्रमिकेभ्य महिलाभ्य कृषकेभ्य मत्स्यजीविभ्य सूक्ष्म लघु मध्य

0: महिला सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने

0: समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इनोवेशन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नवमा भारत के पूर्व से प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है।

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते को 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए।

एन वे अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे

जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2

0: आश्रमों लाभ लेने में पूरा कीजिए।
1: राज्य में पहली जून थी 15 ऑगस्ट सुधी मछीमारी ने सीजन बंद कर देवामां आवे छे। मछीमारी ने सीजन पूर्ण थता मछीमारो आ समयगाळा दरमियान तेमनी बोटोनो समारकाम करशे। सीजन पूरी थता ज मछीमारोए पोतानी बोटोने बंदर पर लांगरवानी शुरूआत करी दीधी छे। आ दरमियान बंद सीजनमां मछीमारो पोतानी बोटमां विविध समारकामनी कामगीरी करे छे, तेमज आवता वर्ष माटे बोट मालिको खलासी अने टंडल माटेनी पसंदगी करी तेओ साथे आखा वर्षनो करार करे छे। नवसारी जिला में हाईवे होटल और जीआईडीसी विस्तारों में जिला टास्क फोर्स की टीम दरोड़ा पाड़ी 14 बार कामदारों ने मुक्त कराया था। नवसारी जिला कलेक्टर मनीष कुरवानी ने मार्गदर्शन और अध्यक्षता हेठ जिला टास्क फोर्स की टीम विविध विस्तारों में आकस्मिक रेड और रेस्क्यू की सघन कामगिरी हाथ धरी 14 बार कामदारों ने मुक्त कराने 7 एकमों सामने कायदेसर कार्यवाही हाथ धरी थी। महसाणानी सरकारी औद्योगिक तालीम संस्था आईटीआईमां कुल 5256 बैठक माटे प्रवेश प्रक्रिया हाथ धराई छे। बे वर्षना अभ्यासक्रम माटे आगामी 23 जून सुधी ऑनलाइन अरजी करी शकाशे। विसનगर मॉडल हेठळ 6 अने महसाणा मॉडल हेठळ 4 आईटीआईमां आ बैठको हाल उपलब्ध छे। आजथी ऑपरेशन मूल हंट अंतर्गत राज्यभरमां मूल एकाउंट सर्जिकल स्ट्राइक थशे। मेमास दरमियान 100% वधारा साथ 7,265 करोड़ रूपयानी राज्य में जीएसटी की आवक थी। 5 दिवस की वरसाद की आगाही वच्चे राज्य में अनेक विस्तारों में भारी पवन साथ वरसादी झापटा। आज थी अमदावाद में साबरमती नदी में 5 जून सुधी महासफाई अभियान,

आकाशवाणी भूज समाचार कल्पना शर्मा जी से। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और म्यांमार राष्ट्र प्रमुख ओ मिन आंग यांगे व्यापार आर्थिक संबंध संरक्षण सुरक्षा मुद्दाओं सरहद व्यवस्थापन विकास सहाय सांस्कृतिक

Power Generation. O la Knesset, care a dus vreo să înțeadă la în Mopelea în Armării. Amin, Romina Vara, ani 700, în Gorilie, Parecal, Arami, Ecvizioni, Pune, Terea, Ruati, Aciar, Bata, Calipașe. राज्य में सरकारी सेवाओं में लगभग हवे एकल यूनिवर्सल एफिडेविट मान्य गया है। कायदा विभागे आएंगे जहर करेला नवा फॉर्मेट मुजब जे सेवाओं में कायदा अन्य नियम मुजब सोगन नियम जरूरी हो परंतु कोई चौकस फॉर्मेट नक्की न हो तो एक समान फॉर्मेट समग्र राज्य में मान्य रखा है। आ नव यूनिवर्सल एफिडेविट तमाम जिला तालुका ग्राम्य तेज शहरी स्तरे कार्यरत तमाम सरकारी कचेरियों सेवा केन्द्रों और सत्ताधिकारियों द्वारा फरजियात पर स्वीकार डिजिटल गुजरात पोर्टल तहत तमाम जनसेवा केन्द्र खाते पर आ एफिडेविट में समान रीते अमल शुरू थे जेथी ऑनलाइन अर्जी करनाराओं ने मोटी सुविधा मिले। नागरिकों ने वारंवार जुदा जुदा लखण वाली एफिडेविट करावानी पड़ती मुश्किलों अंत लावा सरकार द्वारा आ वहीवटी सुधारो कराए हो सत्तावार यादी में जनवायु। राज्य शिक्षण विभाग द्वारा विद्या सहायक और शिक्षकों ने कुल 3,966 खाली जगह भरवा जाहरात कर दी है। लायकात धरावता उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल पर जाता फॉर्म भरी सके। आ भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन अरजी करने गई काल प्रारंभ थे और उम्मीदवार आगामी 10 जून सुधी अरजी कर सकते।

Celebrating Bucketlist Monday is Santamani. Kalakar, Narayan Swami Swami Bhajan Otsavashu. This Vadi, Manoranjan Karyakrama Abhineta, Nirdeshak, Raj Kapoor ni Puna Tithi par Vishesh Filmi Geetu. This on the 40th Monday, Lok Sangeet. Tayati Mahiti Avashwari ni Bush Kendra Parthi Halu Pachi Prasarit Thamara Karyakrama ni Pani Halu Mahiti आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट तथा भोज केंद्र पर थे प्रसारित थाना कार्यक्रम में 11 बजे आकाशवाणी अहमदाबाद पर थे कार्यक्रम रिले थे 11:10 सरकार में बार वर्ष के विषय विशेष कार्यक्रम 12:02 गुजराती गैर फिल्मी गीतों 12:30 बहनों मेरा कार्यक्रम सहियर भोज केंद्र की प्रस्तुति जिनमें आज बात विश्व पर्यावरण दिवस ने अनुलक्षी ने भावी पंडिया ने वार्तालाप चलो तरोवर में भजिए कार्यक्रम प्रस्तुति जिग्ना मेहता अनिल धारा अधिकारी ने आ कार्यक्रम अहमदाबाद वडोदरा राजकोट तथा भोज थी सह प्रसारित करवाना आवश्यक आकाशवाणी भुज समाचार हेडलाइंस 5:45 आकाशवाणी भुज कच्छ जय भावर 6:25 आकाशवाणी भुज स्थानिक समाचार 6:30 युवावाणी आकाशवाणी भोज केंद्र ने प्रस्तुति चेस भविष्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुति अमिकालिया तथा केविन सोनी निर्माण भारत करमता और कार्यक्रम अहमदाबाद वडोदरा तथा भोज केंद्र पर सह प्रसारित करवाना आवश्यक

मुख्यमंत्री विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आंग लाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति

Dinner dışı da bir şey kırıksı ve böyle artık sanılır. Rıksa, sırıksa, sema pıtıngın, vikasa yug, o çetri istiti babakitli. Nama Bharat ka ranitik pulasi dışı, iski 1640 kilometer lambi sema. Nagaland aur Manipur sahit Bharat ke kai purvottar rajyon se lagi hai. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री एनएन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पांच दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति एनएन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे।

राष्ट्रीय वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति

हुए उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार

0: वाले वानिश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपने नए बुटीक शॉप खोले हैं और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की

समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @NewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार भूलोक में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद है। वन

0: the Bureau in 1937, while in 1938 he won a book published in his name, The Valley of Pearls. 2005, he was awarded the UNESCO World Heritage Site Declaration.
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है।

उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौकाचालकों को वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुल 22 लोगों को अब टारगेट

संघ टीम हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, वाई लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया, तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज

0: Eso es bueno. Aunque voy a subir por más encima, por esto que te engana en la mano, ni con ver ni se nunca que no te pudies mi vi, es este que eres a ti. Ahora más que se mucha arba tronque es un kilo que se hace en ya a Marte.
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुख पृष्ठ पर जगह दी है। लोकशक्ति ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण

0: स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आला अधिकारियों के साथ मंत्रालय को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वेल रिजन ने म्यांमार के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य के लिए मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

देश का कल्चर शामिल और हॉकी अंग्रेजी टीम एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त।

आकाशवाणी भोज प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्र प्रमुख ओंग आंग यांग नई दिल्ली में द्विपक्षीय वाटाघाटो करी। भारत और म्यांमार कोलाबन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ने वहली तक के पूर्ण करने सहमत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गईकाले मध्य प्रदेश रायसेन जिला रामसिया गांव थी खेतर बचाओ अभियान नो राष्ट्रव्यापी प्रारंभ करायो। देशभर में पेट्रोल और डीजल में पूरतो पुरवठो उपलब्ध।

0: स्वामी जी बुद्ध कैंगन थोड़ा करीम लाल सांगल मुझे कच्छ जे मिलेगा के कर दिल से ही कार्य दी मालिए जो जिया बसो पाला भारत जो कुल क्षेत्र में के दुनिया जो कुल जो गया थे के देश में पहला चिंता वसु पुत्र सहलो लगो अने इन्हें जीने पे जे जी बायो अगी आवे ना अने के तो खरीकर ता नतमस्तक क्यों तो पाओ छोड़े अने तो पहले जो टाइम कर हुआ के जाने जी के घर वाले जी दूसरे बना दो हुआ माँ पे जो तुझे अगदी हरे बिंदे ने अने तो जी बायो पन जाने माँ पे जो घर जी जो तो उसरी ने तुम भोगो ते अरंगी ने जिन जी घरे पर बंदा हुआ ना जी परमाणु या करी ने इन जी घर जी जो को उसरी ते खिली हुआ ना इन ते पंच मरे अरमान पे जी इच्छाओं मरे अधूरी इच्छाओं इन ते पंच विजय हुए अने घर जी दीवाने जा पर भरा अने इन घर जो उंगरो ये इच्छनी हो के इन जी पगला इन जा जो को पकड़ो ते इनके औरत थी अने इन पंजी इच्छा जो पंजी अरमाने जो सतत ही मेरो ते बलराम गेंदी वे पंजी इच्छा जी पंजी अरमाने जो ये सतत न सतत इनके दबान दी वे के इनके वो के घर जो सभ्यो पलटन के समझी सकता अने इन जो जी सवेरे जी चाय थी करी अने रात जे अंधेरे बच असार थिंदो वंदो हो अने ए रात जो अंधेरो अने सवेरे जो उठी में घर जी चिक्की में बाई पिसा दी बंदी में अने इन की तेजे घर जी जो को खेली हुई इन ते जाए तें जो सजो अस्तित्व ज ये बाई टंगाई बुते में तेरे मरीज जीवन जे अपने कार में जाने पर अज जी के भारत हकरे सिर घाई का तरीके उठे तो तेरा दीवार बन पी जिंजो अज जन्म ले है अने ओ टाइम में पर हकरे गायब जी क्षेत्र में बाल माल अगे बदे ये वडो आश्चर्य जवान दो अज पांजे स्टूडियो में दीवार बन दिल जे सजी जीवन जी यात मजे जी माल पे सरस मजे जी भालो कर लकड़ी में पांजे स्टूडियो में पधारा है लीना बिन बाधी तो हला लीना बिन आकाशवाणी जी भोज केंद्र पे आगे भल सीखे कार्य होता
1: हाँ कृपा बेन पंजे तुम आकाशवाणी पूछो और दिल की आदर व्यक्त करिए थी के ए मौके मुझे घर रखे है आज हैदर अच्छे जो मौको दे दिवारी बेन विषय जितलो पाल बोलो कितलो ओछो है 2 जून 1943 अमरेली जिले में ठाणे तालुके जे बलखालिया गांव में थियो इन्हें जो मोड़ी पटक लदिया वो अने भजन गाते जो शौक थियो इन्हें प्राथमिक निशान जो पंतर पूरो न करियो अने 9 वरी जे वा तदेज बापा जी जूनागढ़ रेलवे नौकरी थे एतरी ए जूनागढ़ वे नमरी

0: जीवन टिकाना इन्हें दो बार पुल लग्न करो जना हॉस्पिटल में नौकरी पर मिली दो वरे जी उड़ा नौकरी करो तो जूनागढ़ पब्लिक हॉस्पिटल में नर्सिंग क्वार्टर में रसोई जी पर नौकरी करो।
1: अच्छा अजय ही मतलब तो दिवाली दिन जो जो को जन्म जो को प्राथमिक शिक्षण पहुंचू तो खरेखर छोकरी छोकरी ला करी ने कदे जी जा घणे में सपना जी जी घणे में वाटो तुम जो पद्धति जी वाट मेर दी गयो तदे ई जीवन

की हुए तो मैं पहले तो मैं सब थी वो मेरे चंद्र जो विषय हुए हैं छतें पर ये पंजे बलबूते ते पंजे पगते नर्सिंग जे क्वार्टर में पंजे हॉस्पिटल में नौकरी करने पंजे पगभर उभर हुआ लखन मोदी रात भर चाहे जे कि दिवाली दिन पंजे जीवन जे शुरुआत में जी पे चूं के समझो तो नहीं पर संकट चीज में वो को समझो छोड़ी ना तो समझ होता है इसलिए कि आई जो को मुश्किली अनुभव होता तो मैं पर आई हर्ष साथे अभी वो तो ताकि प्रगति चौकस मिले थी तब बाद जो है वो दिवाली दिवाली दिन पंजे जीवन तानु ताकि चाहे सुनाया तो दिन दिवाली दिन जो भजन होता है भजन इनके घर में पास हो रही हूँ तो निजी

0: मैनेजर पूछ लूंगा की आऊँ आने जो आभार मिलना थी।
1: ये कार्यक्रम आई आकाशवाणी जे इंदौर केंद्र का नुस्खा थे। मार्बल करंदलवा पाजा कृपा बहन माता।

別だから考えはないし、反省でもないですからな。それしてはいないですよ、私は。私のゴジラで聞いて。

आकाशवाणी भुज गीत सभा कार्यक्रम संभाला आकाशवाणी भुज केन्द्र पर थी। हमने जब दीपाली सोमैया साथियों स्वर में अविनाश व्यास ने रचना संभाली। हमें प्रस्तुत है कार्यक्रम उमंग प्रोजेक्ट एनसीईआरटी।

टीटी प्रस्तुत करता है। आप सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार और श्रोताओं साथ ही साथ नए महीने नए की भी बधाई और साथ ही साथ भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने लिखा है, शांत रहना कमजोरी नहीं ये समझदारी की निशानी है क्योंकि हर जवाब मात्र शब्दों से नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए कुछ पंक्तियां इसमें हम भी जोड़ देते हैं। तो हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, शांत रहना हार नहीं लेकिन सही समय का इंतजार है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज और डॉली रानी अंसारी, गांव खिंडा से तहसील पुलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज, और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, ग्राम पीपलगढ़ सलगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे संदेशों के लिए। तो आइए अब सुनते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी प्यारी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आज हम चर्चा करेंगे भारत के एक और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के बारे में। आपको याद होगा कल हमने चर्चा की थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो आज जिस विश्वविद्यालय की हम चर्चा करेंगे ये भी भारत की महान ज्ञान परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और समृद्ध शिक्षा केंद्र था। इसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। श्रोताओ जहाँ तक स्थापना की बात है ये लगभग 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक रोचक बात यह है श्रोताओं कि यह किसी शासक या राजवंश द्वारा स्थापित नहीं किया गया। इसका विकास धीरे धीरे एक शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से मिलती जुलती थी क्योंकि इसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार गुरु या शिक्षक चुनते थे और उनके मार्गदर्शन में अध्ययन किया करते थे। तक्षशिला में 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे जैसे वेद और दर्शन, व्याकरण, साहित्य और धनुर्विद्या। साथ ही साथ यहाँ आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता था। श्रोता अब आपको बताते हैं यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों के बारे में। तो यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में कौटिल्य, पाणिनि और चरक थे। चरक को आयुर्वेद का प्रसिद्ध चिकित्सक माना गया है। और यदि हम बात करें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय

नाम सबसे पहले आता है। यहाँ की शिक्षा में अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का अभूतपूर्व समन्वय था, लेकिन स्वतः लगातार हुए विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण धीरे धीरे इस महान शिक्षा केंद्र का पतन हो गया। लेकिन इतना तो जरूर हम कहेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा संस्थान ही नहीं था, लेकिन ज्ञान, शोध और वैश्विक शिक्षा का जाना माना केंद्र था। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय की। आइए सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए। 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और हमारे ईमेल के पते पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं हमारा आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, अपना

0: सिमरन बाहर ही बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: शाम का राग सुनाती थी। सचमुच ऐसी कलाकार है, सर को खूब सजाती थी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम।

Okay.

0: ऊपर देखा, फलों से लगा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
2: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं।

0: सिमरन ने चिड़ियों को दाने खाते देख कर कहा,
1: मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। मामा ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ते हुए फैसला बनाने

शर्मा और ऋषा सयाल, बाल कलाकार वान्या, ध्वनिंकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विनमेश चौधरी तथा निर्माण

साथियों, जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास के स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिल्खा सिंह। यह कार्यक्रम भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के जीवन और खेल की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक रोचक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अजय थोरो।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपके दोस्त वंदना।
0: तो साथियों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया।
1: वे ऐसे लोग थे जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि वे लगातार संघर्ष करते रहे और अपने लक्ष्य को हासिल करके सबके लिए मिसाल बन गए, उदाहरण बन गए।
0: हाँ साथियों, कहते हैं सफलता उन्हीं का पीछा करती है जो सफलता का पीछा करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सर्वोपरि होता है उनका लक्ष्य, जो वे कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से प्राप्त करते हैं।
1: ऐसे लोगों के शब्दकोश में उनके उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता।
0: हाँ साथियों, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पैरों में पंख लगे हैं। खेल जगत में वे एक मिसाल थे और अपने जीवन से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा दी।
1: जी हाँ दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, उस महान एथलीट का नाम है मिल्खा सिंह।
0: हाँ साथियों, ये वही मिल्खा सिंह है जिन्हें उड़न सिख या फ्लाइंग सिख के विशेषण से सम्मान दिया गया। इस धावक का नाम भारतीय एथलेटिक्स में किसी नक्षत्र की तरह उदयमान रहेगा
1: और विश्व एथलेटिक्स में उन्हें 200 और 400 मीटर के दौड़ में शानदार कीर्तिमानों के लिए याद किया जाएगा, जिसे प्राप्त करना किसी भी धावक का सपना होता है।
0: मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को अविभाजित भारत के गोविंदपुर कस्बे में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वे एक सिख जात परिवार से थे।
1: उनका बचपन बहुत सुनहरा था। भारत के विभाजन से पहले जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे, तब उनका स्कूल कोट पद नामक गांव में था, जो उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था।
0: जानने वाले बताते हैं कि उन दिनों मिल्खा सिंह अपने स्कूल के 10 किलोमीटर की दूरी का सफर रोज नंगे पांव तपते रेत पर दौड़ते हुए पूरा करते थे।
1: हाँ, वे खुद बताते हैं कि
0: मई और जून के महीने में तो जमीन इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर पांव रखना भी मुश्किल होता था।
1: लेकिन किसे पता था कि उनका यही अनुभव उनके काम आएगा। खुद मिल्खा सिंह के शब्दों में,
0: प्रतिदिन दौड़ने के इस अभ्यास के कारण मेरा स्टैमिना बहुत बढ़ गया था और शायद इसी अनुभव ने मुझे भविष्य में खेल दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया।
1: ये उस समय की बात है जब भारत का विभाजन हुआ।

घूम रहे थे जितने आज है। गाँव के लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती थी, उन्हें किसी बड़ी घटना का पता तब चलता था जब कोई गांव से सामान लेने शहर जाता था। उनके गांव गोविंदपुर में और आसपास के बहुत से गांवों में लोगों को यह पता भी नहीं था कि विभाजन हो चुका है। वह सभी मिल प्रेम से रहते थे। विभाजन के बाद भयानक

0: quer saber? Lavoura.
1: Vou vindo por dar uma gritão de chino, véi. Vai ficar sem queimar, capitador. Os dando de memória, véi. Vai ficar sem botar terra?
0: मैंने अपने पिता को बहुत बहादुरी से मरते हुए देखा। मरने से पहले मेरे पिता के अंतिम शब्द थे भाग मिल्खा भाग
1: भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह ने पास के जंगल में भाग कर अपनी जान बचाई और रात भर वहीं छुपे रहे। भाग मिल्खा भाग। शायद यही वाक्य मिल्खा सिंह के जीवन का सूत्र बन गया और उन्हें जीवन भर प्रेरित करता रहा।
0: वे अपने माता पिता और परिजनों को खो चुके थे। कुछ समय तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और अंततः वे शरणार्थी बनकर भारत आ गए।
1: वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरे, लेकिन मुश्किलें बहुत थी। उस समय हैजा महामारी तेजी से फैल रही थी। मिल्खा सिंह हजारों शरणार्थियों के साथ 3 सप्ताह तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे।
0: अपने जीवन में उन्हें उम्मीद की छोटी सी किरण तब दिखाई दी जब शरणार्थियों के भारी भीड़ में एक दिन लाउड स्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए। पुकारे जाने वाले उन नामों में उनकी बहन का नाम भी था। वे अपनी बहन से मिले और
1: दोनों भाई बहन दिल्ली के पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। अब शुरू हुआ उनके जीवन का असली संघर्ष।
0: उन्होंने 10 रुपए महीने वेतन पर एक दुकान में सफाई का काम किया और साथ ही साथ एक विद्यालय में दाखिला भी लिया।
1: जीवन का संघर्ष कठिन से कठिन होता जा रहा था। इसी बीच मिल्खा सिंह को पता चला कि भारतीय सेना में जवानों की भर्ती हो रही है। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन शायद नियति को इस समय यह मंजूर नहीं था। वे लगातार 3 बार असफल रहे,
0: लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथी बार में आखिर 1952 में उनका चयन भारतीय सेना में हो गया। साथियों, अब एक इतिहास की शुरुआत होने वाली है।
1: उन्हीं दिनों सेना में एक दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें पूरे ब्रिगेड के सैकड़ों जवानों ने हिस्सा लिया।
0: आज मिल्खा सिंह ने जो यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो फिर खेल और जीवन दोनों के ट्रैक पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: फिर तो मिल्खा सिंह ने खेल और जीवन के ट्रैक पर ऐसे अमर गाथा लिखे जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया।
0: मिल्खा सिंह ने कुल 200 मीटर और 400 मीटर की 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में हिस्सा लिया जिसमें से 77 दौड़ों में उन्होंने जीत हासिल की। मुख्य रूप से 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में शुरुआती हुई जीत के साथ उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया और वो कीर्तिमान आज भी कायम है।
1: के भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट में उन्हें आमंत्रित किया गया। यह उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक से हुआ। उस समय तक अब्दुल खालिक एशिया के सबसे तेज और बेहतरीन धावक माने जाते थे। वे मिल्खा सिंह को हल्के में ले रहे थे।
0: इस एथलेटिक्स मीट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिता थी। मुकाबले के दिन स्टेडियम खचाखच भरा था। लोग बड़ी बेसब्री से दौड़ के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दौड़ शुरू हुई।
1: इस रोमांचकारी दौड़ में जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया तो जनता के तालों के गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा।
0: अब्दुल खालिक बहुत पीछे रह गए थे और मिल्खा सिंह ने बड़ी आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगा मानो मुकाबला तो था ही नहीं।
1: इस दौड़ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान भी देख रहे थे। वे उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उसी समय उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया।
0: इस विजय के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सबसे तेज धावक बन गए।
1: इससे पहले मिल्खा 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में,
0: 1960 में रोम ओलंपिक में और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
1: रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं पाने पर उन्हें हमेशा मनाया रहा।
0: टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक नया इतिहास बनाया।
1: इस खेल के दौरान स्वयं जापान के सम्राट ने उन्हें स्वर्ण पदक पहनाया। मिल्खा सिंह खुद बताते हुए उस घटना के बारे में कहते हैं,
0: उस दिन जापान के सम्राट ने स्वर्ण पदक पहनाते समय मुझे कहा था, यदि तुम दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का स्थान प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए मिल्खा दौड़ना जारी रखो।
1: उनकी अप्रतिम प्रतिभा के कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित
0: किया। सेवा निवृत्ति के बाद वे लंबे समय तक पंजाब सरकार में खेल निदेशक के पद पर रहे। 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।
1: देश और विश्व खेल जगत उन्हें सर्वदा सम्मान के साथ याद करते रहेगा।
0: फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, आपको हमारा सलाम। अभी आपने सुना कार्यक्रम मिल्खा सिंह। आशा है श्रोताओं की यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। और आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।

आकाशवाणी केंद्र पर थे उमंग कार्यक्रम हमेशा पसंद प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT और हमें थोड़ी देर में समाचार हेडलाइंस।

આજે આપ સાંભળશો નારાયણ સ્વામીના સ્વરમાં ભજનો.

बताएं गर्मी में लू लगने से बचाव में करना खास पगला। इस दरमियान बाहर निकलना उपाय हुआ तो शरीर ने माथु ढंकर कई रीते सफेद सुथरा कपड़ा पहनवा, चश्मा छतरी में उपयोग करवा, पानी पीवा, शरबत मोड़ी छाछ नारियल पानी तथा ओआरएस पुष्कर

रसीदी बाहर निकल वो निकाल वो बागवानी असर जनाओ तत्काल नजीक में प्राथमिक आरोग्य केंद्र नो या सरकारी दवाखाना नो संपर्क करवो। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जनहित।

श्रोता मित्र आप सुंदर रहो आकाशवाणी ने पुष्ट केंद्र पर मनोरंजन कार्यक्रम अभिनेता निर्देशक राज कपूर ने पुण्यतिथि पर विशेष गीतों प्रस्तुत है। हमारी फिल्म मुकेश ना स्वर्ण

देश का सम्मान होना चाहिए। जिस देश में गंगा बहती है अफिल्म गीत सुनो, वजह गीत प्रस्तुत फिल्म

0: बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू कोई चाबी का कट्टू।

बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू कोई चाबी का कट्टू।

श्रोता मित्र सांभ आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र नु प्रसारण हम प्रस्तुत छे हिंदी गीत गजल कार्यक्रम की शुरूआत करीशु आशा भोसले गायली जिया जलंधरी रचना थी।

0: बराबर 1 बजे आप समर शो दिल्ली थी प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए

0: लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रूपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रूपये के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रूपये के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रूपये की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरूपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oath as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. External affairs

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोटर भोज प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम जय भारतीय। जय भारतीय कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों आज है 2 जून। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता एवं निर्देशक महान शोमैन राज कपूर जी की पुण्यतिथि। हम सब की ओर से राज कपूर जी को उनकी पुण्यतिथि पर हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि। आज का जय भारती कार्यक्रम राज कपूर के नाम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुकेश की आवाज में जागते रहो फिल्म के इस गाने से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से संवरा है सलील चौधरी ने।

ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या सब सच।

एक खतरा मैं जब पत्थरते हो तो पर पड़ा एक खतरा मैं जब

0: क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: राज कपूर जी ने अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को मादक अंदाज में पर्दे पर पेश करके हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सोवियत संघ और मध्य पूर्व में राज कपूर की लोकप्रियता दंत कथा बन चुकी है। उनकी फिल्मों खासकर श्री 420 में मुंबई की जो मूल तस्वीर पेश की गई है वह फिल्म निर्माताओं को आज भी आकर्षित करती है। राज कपूर जी की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और अपनी ज्यादातर फिल्मों के मुख्य नायक वे खुद होते थे। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर जी का बचपन का नाम रणवीर राज कपूर था। राज कपूर ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की थी। राज कपूर जी बाल कलाकार के रूप में 1935 की इंकलाब, 1943 की हमारी बात और गौरी में छोटी भूमिकाओं में कैमरे के सामने आ चुके थे। राज कपूर ने 1946 की फिल्म वाल्मीकि और 1948 की फिल्म नारद और अमर प्रेम में कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इन तमाम गतिविधियों के बावजूद उनके दिल में एक आग सुलग रही थी कि वे स्वयं निर्माता निर्देशक बनकर अपनी स्वतंत्र फिल्म का निर्माण करें। उनका सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग से पूरा हुआ, जो 1948 में बनी थी, जिसका निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने स्वयं किया था। उसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और चेंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में उन्होंने अपने आरके स्टूडियो की स्थापना की। तो आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया आशिक फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

दोस्तों, राज कपूर जी को 1951 की फिल्म आवारा में रोमानी नायक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राज कपूर जी ने 1949 की बरसात, 1955 की श्री 420, 1956 की जागती रहो और 1970 की मेरा नाम जोकर जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन, लेखन और उन फिल्मों में अभिनय भी किया। उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर हमेशा कहते थे कि राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने उन्हें काम दिया था। तब पृथ्वीराज कपूर ने कहा था कि आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन वह भी होगा जब लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पापा कहके बुलाएंगे। उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर की अभिनय क्षमता और लगन को पहचान लिया था और उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नील कमल के नायक की भूमिका दी थी। दोस्तों, नायक के रूप में राज कपूर का फिल्मी सफर हिंदी सिनेमा की वीनस मानी जाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ आरंभ हुआ था। नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ ही राज कपूर ने सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिकाएं की। दोस्तों, सन 1951 में प्रदर्शित आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने राज कपूर जी को नायक के रूप में एक नई और अलग पहचान दी। आवारा ने ही फिल्मकार के रूप में एक दृष्टिकोण दिया और आवारा ने ही उनकी फिल्मों को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया। आइए अब सुनते हैं आवारा फिल्म का ये गाना।

0: सन 1952 में नायक के रूप में राज कपूर जी की चार फिल्में प्रदर्शित हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। इन चारों फिल्मों की नायिका नरगिस थी। इतना ही नहीं, सन 1951 से 1956 के बीच राज कपूर की जितनी भी फिल्में आई उनमें नायिका नरगिस ही थी। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उस वर्ष की जयंत देसाई निर्देशित अंबर सबसे सफल फिल्म थी। दोस्तों, सन 1953 राज कपूर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष साबित हुआ। उस वर्ष उनकी आरके फिल्म्स की तीन फिल्में रिलीज हुई, आ, धुन और पापी। ये तीनों ही फिल्में असफल हो गई। हालांकि इनमें से आ की असफलता एक आश्चर्यजनक बात थी। उस फिल्म में राज कपूर ने टीबी के मरीज के रूप में एक निराश प्रेमी की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शक स्वीकार नहीं कर पाए।
1: तो आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में दिल ही तो है फिल्म का गीत। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

0: दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर की असफलता के बाद आर के फिल्म्स के अंतर्गत एक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसने पूरे फिल्म उद्योग को चौंका दिया। वह फिल्म थी बूट पॉलिश, जिसमें राज कपूर स्वयं नायक भी नहीं थे और निर्गिस भी नहीं थी। फिल्म बूट पॉलिश एक ऐसा करिश्मा साबित हुई जिसने उनकी प्रतिष्ठा पर लगे धक्के के एहसास तक को नष्ट कर दिया। उस फिल्म की रजत जयंती सफलता ने पूरे फिल्म उद्योग को अचंभे में डाल दिया। तो आइए अब सुनते हैं बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना।
1: चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली

1955 की आरके फिल्म्स की श्री 420 ने फिर से राज कपूर जी को सबसे बढ़कर बना दिया। उस फिल्म को सफलता तो मिली ही, देश विदेश में सराहना भी हुई, और सबसे बढ़कर बात ये थी कि श्री 420 अपने समय की सबसे अलग फिल्म थी, बिल्कुल नए मिजाज की। दर्शकों को इसमें नया स्वाद मिला। तब देश आजाद हुए 8 साल हुए थे, जनमानस पर आजादी का नशा छाया हुआ था। उस फिल्म में राज कपूर का अभिनय बेमिसाल था। उस फिल्म में वो मजाक मजाक में ही बहुत बड़ी बातें कहते हैं। तो अब सुनते हैं श्री 420 फिल्म का ये गाना।

1956 का साल राज कपूर के जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। उस वर्ष उनकी दो फिल्में प्रदर्शित हुई, जागते रहो और चोरी चोरी। इन दोनों फिल्मों में व्यावसायिक दृष्टि से चोरी चोरी अधिक सफल रही, लेकिन जागते रहो भी एक महान फिल्म थी। आइए अब सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गीत।

0: 1957 में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक एलवी प्रसाद की पहली हिंदी फिल्म शारदा में राज कपूर के साथ नायिका के रूप में मीना कुमारी आई। यह फिल्म भी सफल हुई तथा इसने रजत जयंती मनाई। 1958 में राज कपूर जी की दो फिल्में प्रदर्शित हुई, परवरिश और फिर सुबह होगी। उन दोनों ही फिल्मों में नायिका माला सिन्हा थी। फिर सुबह होगी फिल्म दोस्तोयेवस्की के सुप्रसिद्ध उपन्यास अपराध और दंड पर आधारित थी। तो आइए अब सुनते हैं फिर सुबह होगी फिल्म का ये गाना।
1: शास्त्रों में लिखा है, जान लेने और देने वाले भगवान जी, इंसान को इंसान की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। शास्त्र बोलते हैं तो चूटी की जान को भी अनमोल जान। शास्त्र बोलते हैं जिनके मन में क्रोध और नफरत है उन्हें तो प्यार से जीतो।

दोस्तों 1959 में राज कपूर अभिनीत 5 फिल्में प्रदर्शित हुई, अनाड़ी, दो उस्ताद, कन्हैया, मैं नशे में हूँ तथा चार दिल चार राहें। फिल्म अनाड़ी को छोड़कर शेष फिल्में इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। 1960 में राज कपूर की 3 फिल्में प्रदर्शित हुई, छलिया, श्रीमान सत्यवादी और जिस देश में गंगा बहती है। 1961 में नजराना, 1962 में आशिक, 1963 के एक दिल सौ अफसाने, 1964 की दुल्हा दुल्हन और दिल ही तो है। उस फिल्म का मन्नाडे द्वारा गाया गीत लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे आज भी लोगों के दिल को झंकृत कर देता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1964 की अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शित हुई फिल्म संगम की। उस फिल्म के 100 से अधिक प्रिंट एक साथ रिलीज किए गए। निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता सभी रूपों में राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। फिल्म संगम ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना दिया। संगम में राज कपूर की नायिका सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला थी और सह अभिनेता थे राजेंद्र कुमार। 1966 में वहीदा रेमन के साथ फिल्म प्रदर्शित हुई तीसरी कसम। यह हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु रचित इसी नाम की लंबी कहानी पर केंद्रित थी। 1967 में राज कपूर अभिनीत अराउंड द वर्ल्ड और दीवाना तथा 1968 में सपनों का सौदागर फिल्में आई। लेकिन हम अभी बात करेंगे 1970 की आरके फिल्म्स की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर की। यह फिल्म राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी। उसी समय दीवानों की फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम फिल्म के सामने राज कपूर जी की मेरा नाम जोकर नहीं चली। मेरा नाम जोकर के साथ ही राज कपूर जी ने नायक के रूप में फिल्मों से विदा ले ली। बस तो मेरा नाम जोकर जैसी क्लासिक फिल्म को व्यावसायिक असफलता तथा अपनी व्यावसायिक क्षमता के प्रति लोगों की आशंकाओं को निराधार साबित करते हुए राज कपूर जी ने स्वनिर्मित बॉबी फिल्म के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि यदि बॉक्स ऑफिस ही उनके ध्यान में हो तो वे बड़े बड़े सितारों के बिना भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने में पूरी तरह सक्षम है। 1973 की फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म बॉबी की सफलता के बाद राज कपूर ने अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई जो फिर एक बार हिट हुई। सत्यम शिवम सुंदरम के बाद राज कपूर ने प्रेम रोग का निर्माण किया। नायक थे ऋषि कपूर और नायिका पद्मिनी कोल्हापुरे। 1985 में रणधीर कपूर द्वारा निर्मित तथा राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली प्रदर्शित हुई। दोस्तों आप जानते हैं कि राज कपूर जी को संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, साथ ही साथ वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह के संगीत को लोग पसंद करते हैं। यही कारण है कि आज तक उनकी फिल्मों के गाने लोकप्रिय है। गीतकार शैलेंद्र तथा हसरत जयपुरी, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन राज कपूर की एक मजबूत टीम थी। दोस्तों राज कपूर जी को मिले पुरस्कार की बात करें तो 1960 की फिल्म अनाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1962 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1965 की फिल्म संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और संपादक के फिल्म फेयर पुरस्कार, 1972 की मेरा नाम जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, 1983 की प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और संपादक

पुरस्कार और उसी तरह 1986 की राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संपादक का फिल्म फेयर पुरस्कार। भारत सरकार ने सन 1971 में राज कपूर जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1987 में राज कपूर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऐसे महान शोमैन राज कपूर जी को एक बार फिर हम सब की ओर से आज उनकी पुण्यतिथि पर हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मेरे नाम जोकर फिल्म का ये गीत।

0: जय भारती। ये था फैजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज केंद्र से किया गया।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिन्दुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच

0: Oscar. Hay que ayudar a enseñar a que se acuerden que yo en tu colegio. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा मशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों

मजबूत है। भारतीय ने व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आवेदन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आवेदन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसमें आवेदन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आवेदन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिव नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति की मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरल में अगस्त मलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाए गए त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन ऑनलाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम इन ऑनलाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामा शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉम्पटन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कॉन्सेप्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जनता भी शामिल होगी, सिविल प्रशासन भी शामिल होगा, स्थानीय पुलिस और मिलिट्री भी शामिल होगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहने की ही रहेगी। समग्र बॉर्डर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा भीड़ मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: अमित शाह वधु में क्यों के देश के सरहद के अवैध बनेला करे हजारों करोड़े रूपये जी रोकड़ साथ ड्रोन रडार अने आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद की चतुष्कोणीय स्मार्ट ग्रीड उभी करेंगे अचीनी सुरक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्व जो गणाजे तो एरो सिर क्लिक अने हरामी नाड़े जेरे विस्तार में वॉच टावर अने कनेक्टिंग रोड तैयार करीने आगामी दो वर्ष में सरहद के संपूर्ण रीते लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रीड तैयार करेंगे अचीनी जेजे कारण सरहद आखी कायम ना करे सुरक्षित थी विंदी।
0: तो आज जी सेवन और जी थर्टीन का लोकार्पण हुआ है, देश का गृह मंत्री बना तब बीएसएफ के पहले रिव्यू में हरामी नाला का और प्रत्येक का क्षेत्र पूरा कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीछे रखता है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी। मुझे बड़ा बड़ा अधिकार स्थिति तो मालूम नहीं है, पर प्रवीण जी ने जो अभी बताए उससे मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और दो साल में हमारे वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र इसम की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत बहुत
1: कच्छ जिले में खेती और गर्जे मिलकत की साचवनी करती डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर एटले के DLIRG कचेरी जो विकेंद्रीकरण करीने हने तमाम तालुका मथक पे इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड जी कचेरी शुरू करे जो सरकार तरफ थी आदेश करीने आयो है। हेवर सुंदी आखे कच्छ जो भार खाली भुज जी हेकड़ी कचेरी मथे जो जेने कारण जमीन मापणी नक्शा टिप्पणी सूटबुक अने उत्तरोत्तर नोंधे जरा जरूरी दस्तावेज गणेला करे अरजदारे के मुश्किली पोंदी वी पर सरकार जे नवे निर्णय अनुसार राज्य जी 138 जगह जी साथे कच्छ जे 11 तालुके में जमीन दफ्तर निरीक्षक की निमणूक करेली आवी आए हेन आदेश अंतर्गत भोज शहर अने ग्राम नखत्राणा गांधीधाम मुंद्रा मांडवी नलिया दयापर भचाऊ अने मापर में तालुका निरीक्षक की निमणूक जो हुकम करेली आया है। दरेक तालुका कचेरी में 15-20 कर्मचारी जो स्टाफ कार्यरत रहो तालुका कक्षाए तेज हेन प्रकार जी सुविधा उभी थी ना मिलकत चा तमाम उतारा अने विगत अरजदारे के आसानी थी मिली रहो अने भोज सुनी धकापन राज्य जी साथ कच्छ में पण गई काल थी वस्ती गणतरी जी कामगिरी जे पहले तबके जो विधिवत प्रारंभ थी गयो है। 1 जून थी 3 जून सुधी गणतरी दान दरियादी अने मकाने जी गणतरी केंद्र कच्छ जेड़े विशाल भौगोलिक विस्तार में कामगिरी के समयसर पूरी करेला करे वहीवटी तंत्र तरफ थी 4000 जेटला गणतरीदार हिन कामगिरी में रोकड़ आई। इन पहले तबके जी गणतरी में गणतरीदार नागरिक के आवास की स्थिति कुटुंब की विगत पीधे जे पानी जो सोर्स शौचालय की सुविधा सहित 33 अलग अलग प्रश्न पूछता अने तेजी विगत नोधी ना देश में पहली वक्त वस्ती गणतरी

0: हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हां गीता भाटिया खां ॿुधंदा सिंधीअ में समाचार। सभ खां अवल ख़ासि ख़बरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयो आहे त तैलीम बाख़्तियार बणाइण जो ताक़तवर ज़रियो आहे। राष्ट्रपति साहिब अॼु नई दहलीअ में स्कॉलरशिप जो लाभ वठंदड़ क़ाबिली शागिर्दनि खे ख़िताब कयो। भारत जे मुख्य जज सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट जे नवनि जजनि खे उहिदे ऐं राज़दारीअ जो कसम खणायो। 23.20 बिलियन जो ट्रांज़ेक्शन्स मुकमल करे यूपीआई नओं रिकॉर्ड क़ाइम कयो आहे। सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2026 वास्ते दरख़्वास्त करण जी नींड ॾिनी। awards.gov.in पोर्टल ज़रिए ई दरख़्वास्त करे सघिबी। रांदियुनि में महिला क्रिकेट में भारत ऐं इंग्लैंड विच में टीं ऐं आख़िरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच अॼु इंग्लैंड जे टॉन्टन में थींदी। मैच भारतीय वक़्त मुताबिक़ राति जो 11 बजे शुरू थींदी। समाचार तफ़सील सां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ॿुधायो आहे त तैलीम बाख़्तियार बणाइण जो ताक़तवर ज़रियो आहे। जीअं त तैलीम माण्हुनि खे पाण ते भारण ऐं सुजाग बणजण वास्ते क़ाबिल बणाए थी। अॼु नई दिल्ली में स्कॉलरशिप योजना तहत लाभ वठंदड़ क़बायली शागिर्दनि खे ख़िताब कंदे राष्ट्रपति साहिब चयो त हक़ीक़त में तरक़ी तॾहिं ई मुमकिन थींदी जॾहिं समाज जा सभई तबिका तैलीमी सतह ते अॻिते वधी विकास कंदा। राष्ट्रपति साहिब चयो,
1: मेरी राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोहरायो तो भारत में टैलेंट की का भी कमी कोन्हे, फ़क़ति उन खे सुञाणे बहितर बणाए हिकु सही मंच फराम कराइण जी ज़रूरत आहे।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: अजय तेलंगाना जो स्थापना दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना स्थापना दिए के मौके ते मुबारकू दिनियो। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति साहिब चयो त तेलंगाना के शाहूकार सकाफती वर्से ऐं मेहनतकश आवाम जो साथ मिलियो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ बि तेलंगाना स्थापना ॾींहुं जे मौके ते सूबे जे अवाम खे मुबारकूं ॾिनियूं। भारत जे मुख्य जज सूर्यकांत अॼु सुप्रीम कोर्ट जे 5 नवनि जजनि खे उहिदे ऐं राज़दारीअ जो कसम खणायो। इन्हनि में जज शील नागू, जज श्री चंद्रशेखर, जज संजीव सचदेवा ऐं अरुण पल्ली सां गॾु सीनियर एडवोकेट वी मोहना कॉलेजियम जी सिफ़ारिश ते मर्कज़ पारां मंज़ूरी मिलण बैदि बतौर जज उहिदे लाइ कसम खयूं। गुज़िरियल महीने 23.20 बिलियन जी ॾे वठ यानी ट्रांज़ेक्शन्स मुकमल करे डिजिटल अदायगी सिरिश्ते यूपीआई हिकु नओं रिकॉर्ड क़ाइम कयो आहे। सोशल मीडिया पोस्ट में माली शेवाउनि जे महक में नागरिकनि जा शुकराना मञिया, जिन डिजिटल अदायगीअ ते भरोसो रखी उन खे अपनायो। ध्यान ॾियारियो त विश्व सतह ते डिजिटल अदायगी ऐं ॾे वठ जे हक़ीक़ी मंच तौरु यूपीआई उभरियो आहे ऐं यूपीआई जी इन कामयाबी भारत जे अर्थतंत्र खे हथी बि ॾिनी आहे। ध्यान ॾियारियूं त 11 अप्रैल 2016 में यूपीआई जी शुरूआत थी ऐं अॼु इहो भारत जे डिजिटल माली सिरिश्ते खे करंगे जे हॾे तौर संभाले बीठो आहे। सिहत ऐं कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ॿुधायो आहे त मुल्क में सिहत शेवाउनि लाइ नज़रियो बदिलजी वियो आहे। मौजूदा वक़्त में भारत जूं सिहत शेवाऊं ऐं सिहत खितो इलाज करण वारे मॉडल खां तब्दील थी हिकु मज़बूत ढांचो बणिजी वियो आहे। श्री नड्डा ॿुधायो त मुल्क भर में 1,82,000 खां बि वधीक आयुष्मान आरोग्य मंदर सिहत शेवा लाइ अवलियत वारनि मर्कज़नि तौरु क़ाइम करे रहिया आहिनि। सिहत मंत्री श्री नड्डा अॼु पंजाब जे बटिंडा में एम्स जे ॿिए पदवी इनायत जलसे में ख़िताब करे रहियो हो। ही खबरूं तमी आकाशवाणी ता बुधी रहा वधी का खबरूं जी तफसील है तमी असाई वेबसाइट newsonair.gov.in के लॉगिन कर सको था आकाशवाणी ता सिंधी समाचार ता असाजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते भी बुधी सको था। सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2026 वास्ते दरख्वास्त करण जी नींद डिनी आहे। दरख्वास्त मोकलण जी आखरीन तारीख 31 जुलाई आहे। ध्यान ॾियारियो त ॿारनि खे गैर मामूली हासिलातन ऐं लासानी योगदान वास्ते हर साल राष्ट्र बाल पुरस्कार सां नवाज़ियो वेंदो आहे। इहे इनाम मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज में ॾिना वेंदा आहिनि। इन ॾिस में बाल ऐं महिला विकास वज़रात ॿुधायो त फ़क़त राष्ट्र अवार्ड पोर्टल awards.gov.in ज़रिए ई दरख्वास्त करे सघिबी। नेपाल में हुकुमरान राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जे वडेरे रबी लामी छाने जी रहनुमाई हेठ हिक वफद अॼु नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरबराह नितिन डबिन सां खास मुलाकात कई। गॾजाणीअ जो मक़सद ॿिन्ही पार्टियुनि विच में लाॻापन खे वधीक मज़बूत करणु आहे। इहा मुलाक़ात भारतीय जनता पार्टीअ जे मुख्य मर्कज़ यानी हेडक्वार्टर में थी। नेपाल मां मुलाकात ते आयल उच सतह जी वफद जो स्वागत कंदे श्री नितिन नबीन चयो त बैठक दौरान भारत ऐं नेपाल विच में जारी कदीम रिश्तनि बाबति ॻाल्हि ॿोलती ऐं उनखे मज़बूत करण बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह सुभाणे नई दिल्लीअ में मुंतज़िम कयो वेंदो। मुल्क भर जूं 42 बहितरीन पंचायतुनि खे इहे इनाम अता कया वेंदा। समारोह दौरान 34 ॻोठाणा पंचायतुनि खे दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जे तहत इनाम ॾिना वेंदा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE आंसर शीट जी खामियुनि जी सचाई ऐं ॿीहर कथ करण लाइ ख़ासि पोर्टल अॼु खां

0: शुरू कयो आहे। इहो पोर्टल 6 जून ताईं खुलियल रहंदो। इन सिलसिले में असांजे नुमाइंदे ॿुधायो आहे।
1: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: लेबनान के दाखणे हिस्से में अज इजरायली ड्रोन हमलन में घट 8 जणा मौत जो बख बढ़िया है। गौर फरमाईंदा त इजरायल काल बैरूत के कुछ शहरन में हमला करण की धमकी दिनी हुई। आबोहवा महकमे राजस्थान, गुजरात, ओलही मध्य प्रदेश, ओडिशा ए साहली आंध्र प्रदेश में अज वाचूड़े जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन ईदड़ बिन का टी डिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान ए निकोबार में हवाओं से गड बरसात पवण जा इम्कान आहिन। महिला क्रिकेट में भारत ए इंग्लैंड के विच में टी ए आखिरी T20 मैच अज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेली वेंदी। मैच भारतीय वक्त मुताबिक रात जो 11 बजे शुरू थीन्दी। घरेलू शेयर बाजार में अज शुरुआती कारोबार में पैरों मंदी ए उनखा पोए अध सैकड़े जी तेजी दिसण में मिली। अज मुंबई शेयर बाजार जो सेंसेक्स 383 अंग वधी 74649.84 ते बंद थियो। एनएसई 101 अंग वधी 23483.55 ते बंद थियो। आखिर में खास खबरों एक बार बेहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयो आहे त तैलीम बाख्तियार बनाइण जो ताकतवर ज़रियो आहे। राष्ट्रपति साहिब अज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप जो लाभ वठंदड़ कबायली शागिर्दन के खिताब कयो। भारत के मुख्य जज सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के 5 नवन जजन के उहिदे ए राजदारी जो कसम खणायो। 23.20 बिलियन जा ट्रांजेक्शन्स मुकमल करे यूपीआई 9 रिकॉर्ड कायम कयो आहे। सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2026 वास्ते दरख्वास्त करण की नींद डिनी। ए रांदियुन में महिला क्रिकेट में भारत ए इंग्लैंड विच में टी ए आखिरी T20 मैच अज इंग्लैंड के टॉन्टन में थी दी। मैच भारतीय वक्त मुताबिक रात जो 11 बजे शुरू थी। आकाशवाणी ता सिंधी समाचार जो अंक ते पूरो थियो। नमस्ते।
2: आकाशवाणी भूज समाचार अशरफ नथवाणी वाचे छे। नमस्कार। विविध साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सिस्टम सक्रिय थवाने कारणे राज्य में चौमासा पूर्वेनी वरसादी गतिविधिओ शुरू थई छे। राज्यना केटलाक जिल्लामां गत 24 कलाकमां नोंधपात्र वरसाद पड्यो छे। तेना कारणे केटलीक जग्याए नुकसान थयाना पण अहेवाल छे। जो के आजे वरसादनुं जोर घटता बपोरे 12 वाग्या सुधीमां मात्र 6 तालुकामां वरसाद नोंधायो छे। दरमियान हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 तारीख सुधी कच्छ सहित राज्यना विविध जिल्लाओमां गाजवीज साथे वरसाद थवानी आगाही करवामां आवी छे। राज्यमां हाल 3 प्रणाली सक्रिय होवाथी वातावरण में अस्थिरता जोवा मळी रही छे। उपरांत आजे अने आवतीकाले सौराष्ट्र अने कच्छ में वरसादनो ओरेंज एलर्ट जाहेर करायो छे। पूर्व कच्छ जिल्लामां मादक पदार्थों की गैरकायदेसर हेराफेरी वेचाण तेमज सेवन करनारा तत्वों सामे पोलीसे लाल आंख करी छे। जिला पोलीस वडाना मार्गदर्शन हेठळ शुरू करायेला से नो टू ड्रग्स इन ईस्ट कच्छ मिशन अंतर्गत चालू वर्षे नशाखोरी नाबूद करवा माटे आ अभियान चाली रह्युं छे। पोलीस द्वारा जाहेर करायेला आंकड़ा मुजब वर्ष 2025 दरमियान जिल्लाना विविध पोलीस स्टेशनों अने शाखाओ द्वारा एनडीपीएस एक्ट हेठळ कुल 36 केसो शोधी काढवामां आव्या हता। जेमा 73 आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी छे। ज्यारे चालू वर्षे मात्र 5 महीना में एटले के 1 जानुआरी थी 31 मे 2026 सुधी में कुल 31 केसो शोधी काढवामां आव्या छे। तेमा संडोवायेला 52 आरोपी ने जेल ना सळिया पाछळ धकेली देवामां आव्या छे। पोलीस विभाग द्वारा जाहेर जनता ने नशाना दूषण ने डामवा माटे सहकार आपवा अपील करवामां आवी छे। जिल्लाना कोईपण विस्तार में नशीला पदार्थों वेचाण, हेराफेरी के सेवन थतो होवानी माहिती मळे तो तुरत ज पोलीस नो संपर्क करवा जणाववामां आव्युं छे। जिला मथक भूज शहर खावड़ा रोड पर आवेली कामधेनु यूनिवर्सिटी संचालित सरकारी वेटरनरी कॉलेज में चालू शैक्षणिक सत्र थी प्रवेश की शुरूआत कराई छे। वर्ष 2026-27 शैक्षणिक सत्र थी 80 विद्यार्थियों ने प्रवेश अपाशे। कॉलेज में बीबीएससी एनएएच एटले के

0: Virgin Hittite, Belgian Supply. આઠ જૂન 1936 થી આપની સેવામાં રહેલી આકાશવાણી 9 વર્ષથી સમાજના સચોટ માહિતી, શિક્ષણ અને સાત્વિક મનોરંજન પૂરું પાડી રહી છે. આજે સમગ્ર ભારતમાં લગભગ 591 સ્ટેશનોનું સંચાલન કરી રહી છે. આકાશવાણીના સૂત્ર બહુજન હિતાય બહુજન સુખાયને સાકાર કરતા આજે આકાશવાણી ભારતના 90% ભૌગોલિક વિસ્તારમાં 99% જેટલી વસ્તીને આવરેલા છે. દેશના ગ્રામીણ, શહેરી અને સરહદી વિસ્તારોમાં 23 ભાષાઓ અને 180 જેટલી બોલીઓ દ્વારા રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક કાર્યક્રમો પહોંચાડી રહી છે. આધુનિક સમયને માન આપીને DTH, મોબાઇલ એપ્સ અને વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર 24 કલાક આપણી સેવામાં હાજર રહેતી ભારતીય વારસો અને સંસ્કૃતિનું જતન કરતી આકાશવાણીને આજે 9 વર્ષે લાખ લાખ અભિનંદન.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં સરફિરોઝી. भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही. श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है.
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है. सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है. हमें सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं. भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया. श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं. वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे. आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे. श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी.

0: ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आवर्जन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाए गए त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टोरंटो में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अंसा करवन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत है आज ना मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिष्यवृत्ति योजनाओं ने युवाओं ना स्वप्न ने पांख अपनावा माध्यम गणावी। न्यायमूर्ति सूर्यकांते सर्वोच्च अदालत 5 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ लेवड़ाया। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार प्रथम तबक्का मोटा भागना घटकों ने अंतिम स्वरूप आप्यू। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में गांधीनगर में पोलिस विभाग की समीक्षा बैठक योजाई। जिला मथक भूज शहर खावड़ा रोड पर आवेली कामधेनु यूनिवर्सिटी संचालित सरकारी वेटरनरी कॉलेज में चालू शैक्षणिक सत्र थी 80 विद्यार्थियों ने प्रवेश अपाशे। जिला पुलिस वाला मार्गदर्शन हेठ शुरू करायेला से नो टू ड्रग्स इन ईस्ट कच्छ मिशन अंतर्गत चालू वर्षे नशाखोरी नाबूद करवा शुरू करायू खास अभियान। वर्ष 2025 दरमियान जिला विविध पोलिस स्टेशनों और शाखाओं द्वारा एनडीपीएस एक्ट हेठ कुल 36 केसों शोधी काढ़ाया जेमा 73 आरोपियों की धरपकड़ कराई। नखत्राणा शहर में ट्राफिक समस्या हल करवा और अकस्मातों निवारवा माटे पोलिस एक्शन मोड में आवी। ट्राफिक नियमों पालन न करता वाहन चालकों सामे मेगा ट्राफिक ड्राइव योजाई। राज्य सरकार द्वारा गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वर्ग 1 ना अधिकारियों की बदली और भर्ती ना करायेला आदेश अंतर्गत कच्छना निवासी अधिक कलेक्टर सहित 3 जेटला अधिकारियों की कच्छनी बहार बदली कराई। तेनी जग्याए नवा 4 अधिकारियों ने कच्छ में पोस्टिंग अपायुं। राज्यना केटलाक जिल्लामां गत 24 कलाकमां नोंधपात्र वरसाद पड्यो। हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 तारीख सुधी कच्छ सहित राज्यना विविध विस्तारोमां गाजवीज साथे वरसादनी आगाही। मुख्य समाचार पूरा थया।

प्रस्तुत है हवा महल। इस कार्यक्रम में सुनवा रही है संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी ससुराल का नौकर। निर्देशक हैं राकेश ढौंडियाल।

0: सुबह के 9 बज गए पर रामू का कहीं पता नहीं है। रामू, ओ रामू, देखो इस कमरे में भी देख लो, ये ससुराल से आया नौकर मालिक से कम नहीं है। रामू, ए रामू, रामू, रामू उठ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो लौट मांगू।
1: कौन है? साहब है।
0: अरे का साहब, हम इतना अच्छा सपना देखत रहे कि कभी कुछ हो नहीं।
2: अच्छा, सपना देख रहा था, वहाँ घर के काम कौन करेगा, तेरा बाप?
0: अरे साहब, देखो हमारे बाप तक न पहुँची हो। अरे हमारा सपना पूरा हो गए में तनक सी कसर हती कि आप न उठा दो। अरे ऐसे कौन सा पहाड़ टूट पड़ो जो आपने हमको डिस्टर्ब कर दो।
1: तुम्हारी चाय कितने हैं?
0: और चाय के बच्चे 9 बज गए हैं, 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और तू अभी चाय की रट लगा रहा है। अरे तू यहाँ चाय पीने के लिए नहीं, काम करने के लिए ससुराल से आया है। अरे तनक तनक गम खाओ साहब, ये गुस्सा गुस्सा कौन और पे दिख रही हो।
2: अरे
0: माओ भी एक रूटीन है, हम उसी पे चलते हैं। और देखो साहब, जैसे दीदी को इतने इम्पोर्टेंस मिलते हैं, वैसे अपन को भी इम्पोर्टेंस चाहिए। और हमको गुस्सा मत दिलवाइयो, नहीं तो जीरो आपको घर और हम चले अपने घर।
2: हे भगवान, ये कहाँ से मुसीबत आ गई। वो क्या कहते हैं, बुलाया था काम करने के लिए और ये तो मर्द हुआ।
0: कौन आ गई, कौन आ गई साहब, और कितने हैं?
1: अच्छा, तो आप सामने वाले फ्लैट में उन मैम साहब को घूरत रहे।
0: अब तो दीदी को सारी बातें बताना पड़ेंगी।
1: दीदी, दीदी,
0: दीदी,
1: दीदी,
0: बाप रे, क्यों हमारी

0: अनकंडीशनल जिंदगी में टीटा जला रहा है मेरा बाप। अच्छा अब जल्दी से मेरे लिए मूली के पराठे और टमाटर की सब्जी बना दे। अरे पहले हमको चाय, फिर एक गिलास दूध और उसके बाद आधा किलो गाजर का हलवा का प्रबंध करो। तू ये मत भूल कि तू यहाँ काम करने आया है, करवाने नहीं। और हाँ, मेरे कहे अनुसार अगर तूने काम नहीं किया ना तो बांध अपना बुढ़िया बिस्तर और निकल यहाँ से। दीदी चुप चुप रे, मेरे घर में हाथ लगाएगा क्या?
1: अरे क्या हुआ?
2: अरे दीदी हमारी बेइज्जती करवानी होती तो हमें इत्तेफाक बुलाओ।
1: अरे रामू तू तो पसीने से तर बतर हो रहा है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? रामू तू बिल्कुल मत घबरा, बता क्या बात है।
0: अरे रामा तुम कहाँ इस बहु रुपये के चक्कर में पड़ गई? देखो दीदी ये तो मेरे घर में मेरे ऊपर ही क्या कहते हैं वो पेट्रोल डालकर लाइटर लगा रहा है।
1: आप चुप रहिए जी, आप रामू पर बेचारी दोष लगा रहे हो। ये तो बहुत वफादार है, इसीलिए तो पापा ने इसे मेरे साथ भेजा है। इसने जरूर आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा देखा सुना होगा। रामू तू बता मुझे क्या बात है।
0: नहीं रामा ऐसी कोई बात ही नहीं है, रामू तो भोला सा सीधा सा प्यारा सा बच्चा है। हाँ बेटा रामू पहले तेरे को चाय चाहिए?
2: हाँ साहब।
0: फिर दूध का गिलास चाहिए?
2: हाँ साहब।
0: और इसके बाद आधा किलो गाजर का हलवा?
2: वाह साहब वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत ही गजब की
0: है ना।
2: सच्ची साहब अगर हम लोगों को आप जैसे मालिक मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी तर जाए।
0: रमा सुन लिया ना तुमने? तो अब जल्दी से रामू के लिए सब चीजें तैयार करके ले आओ।
1: मैं
3: साहब ये चीजें तो हमने दीदी के हाथ की आपकी ससुराल में बहुत खाई हैं। सो हमाओ कैबो को मतलब ये है तो कि अगर ये सारी चीजें आप बना ला तो हम दोनों चीजों का काम पीसन करके ये बता दे कि कौन अच्छो बनाते।
0: वाह वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए पर तुम जैसे नमूनों को छोड़ गए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए।
3: वो अंग्रेज हो या चंगेज हो हमें कहाँ फर्क पड़ा, अपन को तो गुटली से मतलब है, आम से काले बदे हो।
1: वाह रामू वाह, तेरा भी क्या दिमाग चलता है, वो क्या कहते हैं ना बिल्कुल सुपर परफेक्ट की तरह। और हाँ सुन लीजिए आप भी, मैं भी ये सारी चीजें खाऊंगी।
0: हाँ ठीक है, लेकिन महारानी जी उसे सुपर फास्फेट नहीं सुपर फास्ट कहते हैं।
1: हाँ वही वही।
3: अब देखो देखो दीदी साफ बात बदलने के लाने ऐसी बातें कर रहे हैं।
1: हाँ जी अब आप भी ये सब फालतू बातें छोड़िए और जल्दी से चलिए चलिए ये सब चीजें बना के लाइए।
2: भगवान कहाँ फंस गया मैं, ससुराल से लौट क्यों आया?
0: जब मुसल में सर दिया है तो ओखली से क्या डरना
3: है जी। क्या कह रहे साहब, बाप ऐसे बोलते है जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना।
2: अच्छा मालक, अब आप मालक लोग जाइए तब तक हम आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना दे।
0: ये क्या मुसीबत है, एक घंटे से मैं टाई और सूट ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा है, कहाँ चले गए मेरे टाई और सूट? जब से ये रामू का बच्चा आया है रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देता है। रामा ओ रामा,
3: अरे रामू रामू के बच्चे आते आते साहब आते।
2: देखो साहब अपन को कुछ भी बोला कौन हो फर्क नहीं पड़ा।
3: हाँ, पर बीजी को नाम इज्जत से लेने पर भारत की नारी की इज्जत बढ़ाते समझे।
0: अच्छा तो अब आप मुझे शिक्षा देने लगे हैं।
3: अरे तुझे पता नहीं है क्या रमा मेरी बीबी है
0: और तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन होता है?
3: ऐसो है साहब, रेमन जी कह गए हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, दूसर को शीतल करे आप शीतल होए।
1: वाह रामू तू कितना ज्ञानी कितना विज्ञानी है।
3: वो तो बचपन से हूँ दीदी।
1: देखो जी सीखो सीखो इससे कुछ, एक आप है कि सुबह हुई नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं कभी रामू पर तो कभी मुझ पर।
3: क्या चिल्लाना, अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो दिन रात भौं करता रहूं।
1: आप कुछ भी बोलो पर रामू है बहुत होशियार।
0: हाँ होशियार।

0: जी मैं भुगत रहा हूँ।
1: क्या भुगत रहे हो? अरे क्या भुगत रहे हो, आपके यहाँ तो कोई नौकर मिल ही नहीं रहा था, तभी तो मेरे पापा जी ने ऐसे यहाँ भेजा। एक तो बेचारा दिन रात काम में जुटा रहता है, फिर भी आप उसे कोसते रहते हो।
0: देखो दीदी, साहब को हम और हमारा काम दो पसंद नहीं है, सो अब हम कैसे जाते हैं? और जाने की खुशी और दिल उदास है।
2: खूब लगा रहा है कच्ची पक्की अपनी दीदी को।
0: ऐसी बात नहीं है साहब, अपन कोई चीज कच्ची नहीं बनाते, अपन तो एकदम पक्की बनाते।
2: हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, अब तो बता दो कि मेरा सूट और मेरी टाई कहाँ है?
0: अरे आज ऑफिस में मीटिंग है।
1: वो ऐसा है कि मैंने आपका सूट आज के लिए रामू को दे दिया है। वो आज सरिता की किटी पार्टी है ना, और उसमें मुझे गुलाब जामुन बना के ले जाना है, और आपके पास तो समय है नहीं। मैंने सोचा कि रास्ते में से ही 10 किलो गुलाब जामुन खरीद लूंगी और उन्हें ले जाने के लिए रामू को साथ में ले लूंगी। अब रामू हमारे यहाँ का यानी कि आपके ससुराल का नौकर ठहरा, यानी इज्जत का सवाल आ गया ना, किसी से कम न पड़े वो वहाँ पर, इसीलिए मैंने उसे सूट और टाई पहना दिया। क्यों जी, कैसी रही मेरी प्लानिंग?
2: वाह, क्या प्लानिंग है,
0: तुम अपनी प्लानिंग को करो और मेरी इज्जत का फलदा बनाती रहो। अरे ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे, एक सूट टाई भी नहीं है मेरे पास।
2: लो साहब, इतनी सी बात को परेशान हो रहे हैं आप? अरे कह दियो कि घर से सूट पहन के निकले थे, पर रास्ते में ससुरी बिल्ली कन्नी काट गई, तो वापस घर जाकर सूट उतार के आना पड़ो।
0: अरे क्या मतलब, बिल्ली कन्नी काट गई?
2: अरे का साहब, इतनी भी बात नहीं समझता? हमाओ कैदों को मतलब जी हटो कि आप एक गटर के पास से निकल रहे थे कि अचानक आपको पैर फिसल गयो और सूट गंदा हो गया।
1: वाह वाह, क्या दिमाग पाया है तूने रामू।
0: थैंक यू दीदी।
1: सच रामू, अब तो पूरी जिंदगी तू इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना।
0: अच्छा रामू, अरे ये एक मिनट भी यहाँ देखो तो मैं इसका खून पी जाऊंगा। देखो साहब, अब आप खून पियो चाहे पानी पियो, मैं तो सूट पहन के आता हूँ। और दीदी आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ।
1: और हाँ, आप भी सुन लीजिए, शाम को सरिता के घर होते हुए आना, शाम का खाना उसी के घर है।
0: यानी कि बेइज्जती पर बेइज्जती। खैर बेटा दिनेश, अब ससुराल का नौकर पाला है तो सहन तो करना ही पड़ेगा।
3: इधर भी एक मांगने वाले को अलाउ नहीं है, अंदर जाना मनाई।
0: अरे मैं तुझे भीख मांगने वाला दिखता हूँ?
3: अरे बारिश करता है, यानी आजकल का भिखारी भी बारिश करता है। अरे बाबा, किसी के माथे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो भिखारी है या नहीं, अपन उसके कपड़ों से चालना से पता चलता है कि वो कौन है।
0: अरे वो चौकीदार भैया, जरा अंदर जाकर सरिता मैम साहब के फ्लैट में खबर करो कि रमा के साहब आए हैं।
3: अच्छा अच्छा, तुम भिखारी के साथ साथ पागल भी हो। अभी पागल खाने फोन करके मैं कहता कि एक पागल खाने से पागल भाग कर आएगा तू। अरे रमा मैम साहब के साथ तो सुबह से किसी पार्टी में आए।
0: अरे वो हमारा नौकर है रामू, रमा का पति मैं हूँ मैं।
3: वाह साहब जी, अच्छा मजाक करता है। पन रुको, अपन साहब को बुला के लाता है, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। रुकना, भाग मत जाना, समझे? इधर ही रुक।
1: अरे जी आप।
2: हाँ मैं तुम्हारा नौकर।
1: अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना।
2: अंदर क्या हूँ, पहले इस चौकीदार को बताओ कि तुम्हारा पति कौन है, मैं या ये ससुराल का नौकर?
3: अरे साहब, अपन साहब समझ गया। अच्छा, ससुराल का नौकर, तभी तो वो लाल साहब और आपने और साहब दिख जाए। लेकिन मैम साहब, इसमें अपन का दोष नहीं है, आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड की तरह रखिए ना।
1: दिनेश मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बेवकूफी के कारण हुआ, मैंने रामू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया था।
2: आज तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी, एक मामूली से चौकीदार ने मुझे बेइज्जत किया।
1: नहीं दिनेश, ऐसा मत बोलो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको अपमानित करने।

0: करवाने का। जो हुआ वो मेरी नादानी थी, मैं भूल गई थी कि हर आदमी की अपनी हैसियत होती है, एक दर्जा होता है, नौकर नौकर होता है, पति पति होता है। मुझे माफ कर दो दिनेश। दिनेश मैं बहुत
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
0: प्लीज दिनेश मुझे माफ कर दो ना प्लीज।
1: तुम शर्मिंदा हो?
0: हाँ।
1: हो?
0: हाँ।
1: चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, देर आए पुलिस आए।
0: इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो चलो अब यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलते हैं।
1: चलो। एक मिनट बहादुर, जरा ये बता, मैम साहब के साथ ससुराल का नौकर अच्छा लगता है या मैं?
0: दिनेश।

सुंदरलाल का नौकर। अभी आपने संतोष श्रीवास्तव की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे राकेश ढोंडियाल। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रों कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गैंगस्टर फिल्म के गीत से, जिसे गाया है केके ने, संगीत प्रीतम का, बोल सैयद कादरी के।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ ध्रुव भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका ना फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए मुस्तफा जैद को फिल्म आवारा बनने। सैयद कादरी ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है।

प्रयोग कार्यक्रम में लजीब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म सुपर 30 में। अजय अतुल ने संगीत दिए हैं और वो लिखे हैं अमिताभ भट्ट।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश राहत फतेह अली खां और सुजैन टिमालो की आवाज में। फिल्म का नाम है वीर। गुलजार के लिखे गीत की धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पूर्ण मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त करी हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गई और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपुकोसा मशतिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक सीरीज नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति श्री नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पणेल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मणिलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनः परीक्षा 21 जून को

निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के दो वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 ब्रांचेस
1: ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसलिए एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। FCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या FCAT.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्षीय हस्तक्षेप को निभाया। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार

प्रत्येक रोज ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की जो ब्लू प्रिंट या हमारी पुरानी सड़कें हैं उनके अंदर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करने की एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा ट्रैफिक को वो हैंडल नहीं कर सकती। उसके अलावा दूसरी जो पहलू था वो ये था कि जो कमर्शियल व्हीकल है हमारे अगर वो अर्बन एरिया में और ब्लू प्रिंट सेक्शन के अंदर एंटर करते हैं तो वो आम लोगों की जो सेफ्टी है जो लोकल ट्रैफिक है उसको इंटरफेयर करके उसकी वजह से सेफ्टी के इश्यूज आ रहे हैं। और सबसे एक जो क्रिटिकल इशू है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो बिजनेस प्रोड्यूस है वो कॉम्पिटेटिव बने तो उसके लिए जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको घटाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे कुछ ज्यादा ही है, उसकी वजह से हमारे जो बिजनेस प्रोड्यूस थे फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटेटिव नहीं आ पाती थी। तो इसकी वजह से जो आम जनता है उसका ट्रेवलिंग टाइम रिड्यूस हुआ है। और अभी आप ऑयल क्राइसिस देख रहे हैं तो देश के अंदर अगर ट्रेवलिंग फास्ट होगी तो ऑयल कंजम्पशन माइलेज जो है हमारी एफिकेसी बढ़ेगी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
1: નહીં, સાચી વાત છે કે આ પ્રોજેક્ટથી સમય અને ઇંધણ બંનેની જ બહુ મોટી બચત થઈ રહી છે। જયારે પણ રસ્તા નિર્માણની વાત આવે ત્યારે ભારતમાળા પરિયોજનાની વાત આવે છે, તો શું આ ભારતમાળા પરિયોજના છે અને આ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો કેટલા કિલોમીટરના નેટવર્કનું કામ પૂર્ણ થયું છે અને કયા કયા વિસ્તારોને જોડવામાં આવી રહ્યું છે?
0: ભારત

500 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात स्टेट से जाता है। फिर धोलेरा के अंदर हमारी इतनी मासिव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ गई है, अंबाला से धोलेरा का हमने एक्सप्रेस वे बनाया ना। एक अमृतसर से जामनगर कॉरिडोर है, उसका भी बहुत बड़ा गुजरात के अंदर हमें हिस्सा मिला। अमृतसर से जो जामनगर कॉरिडोर है उसकी वजह से हमारे पूरे नॉर्दर्न इंडिया की कनेक्टिविटी जो

0: गुजरात नंबर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है।
1: सर, आपने हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करी, तो आ एक्सप्रेस वे गुजरात में अत्यार सुधी केटलू काम पूर्ण थयु छे, आगामी समय में केटलू काम थवानु छे पूर्ण, अने राज्य में उद्योगों ने अपनी बात करिए तो शुं फायदो उद्योगों ने मिली रह्यो छे आ एक्सप्रेस वे थवाथी?
0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हम काफी एडवांस स्टेज में है और इसके काफी सारे हिस्से जो है वो ओपन कर चुके हैं।

हमने सेक्शन था वो हमने इस साल जनवरी में ही ओपन कर दिया था। तो अगर किसी भी गुजरात के अंदर जो NH-48 से जो हमारा बड़ोदा से मुंबई रोड पर ट्रैक ट्रेवल करता था, अगर आप उससे बात करेंगे तो सब्सटेंशियल ट्रैफिक जो है हमारे एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हो गया। तो वडोदरा के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक मास्टर प्लान हुआ और NH-48 का लगभग 45% जो ट्रैफिक है वो पर्टिकुलर जो कमर्शियल ट्रैफिक है वो एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हुआ। उसकी वजह से हमारा जो पुराना कॉरिडोर है उस पर आम जन के लिए रोड सेफ्टी बढ़ी क्योंकि बड़े ट्रक जो है वो एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हुए। इसके बाद में जहां तक फैक्ट्रीज की बात है जो मैंने जिस बात से स्टार्ट किया था लॉजिस्टिक पोस्ट इज द की ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप देखेंगे मोरबी में हमारी चाहे कोई टाइल इंडस्ट्री है जो सेरेमिक टाइल की इंडस्ट्री है, हम मोरबी का बाईपास बना रहे हैं मैम, और जो पोर्ट है पोर्ट वो सिर्फ गुजरात के लिए वो नेशनल एसेट है स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो उन पोर्ट के साथ अगर आप ट्रेवल टाइम दिल्ली से देखेंगे पंजाब से

पहले अगर आप इस पर विचार करेंगे, हम कोई भी प्रोजेक्ट है

हमारे बैठे रहा जो नेशनल एसेट्स हैं उनका सिंक्रोनाइजेशन हमारे

जो हमारे पोटेंशियल नोड्स हैं उनके बारे में हमें गति शक्ति बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है। रेलवे के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे नेशनल हाईवे के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे रैपिड रेल के साथ या फिर हमारा जो

अगर वो सर्वाइव करे और उसमें रिन्यूअल की जरूरत न पड़े, उसके लिए हमने एक परपेचुअल पेमेंट है जिसमें 50 साल के लिए उस कॉरिडोर को प्लान किया जाता है, परपेचुअल पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी बेस्ड काफी सारे हम सोल्यूशन ले गए हैं। पहले हम जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत

0: जो क्वालिटी है उसको वो ऑटोमेटिक अचीव करके हमें देगा, उसको हमारे पास पूरा कंप्लीट डिजिटल रखा होगा।
1: बराबर, छह वर्षों में नागरिकों ने सुविधा आने खास कर टोल मैनेजमेंट की बात करें तो घना बदा पगड़ा लगाया है, खास कर फास्टैग की बात है तो शु फास्टैग की सफलता है, आगामी समय में नागरिकों की सुविधा मे क्या क्या अन्य पगड़ा लेवा आयोजन है?
0: मैम आप अगर याद करेंगे तो 12 साल पहले हर व्हीकल का जो स्टॉपेज टाइम था एक टोल प्लाजा के ऊपर

है, गोल जो है वो यूजर वो नहीं दे पाए। उससे हमारा सिस्टम काफी इम्प्रूव हुआ, तो बैरियर के अंदर फास्टर रीड करके और हमारी जो एफिकेसी है सिस्टम की वो इम्प्रूव हुई। हमारा जो व्हीकल है वो 1213 सेकंड में एक टोल प्लाजा को क्रॉस कर लेता था। बट आई एम हैप्पी टू शेयर कि गुजरात के अंदर देश की पहली टेक्नोलॉजी मल्टी लेन फ्री फ्लो जिसमें टोल प्लाजा रहेगा ही, जिसमें गाड़ियां जो है अपनी स्पीड के साथ जो 80-100 की स्पीड है हाईवे पे चलती है उसी पे चलती रहेंगी। और हमने हाई डेफिनेशन कैमरा लगाए हैं वो गाड़ी की नंबर पे

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी,
0: अभिनेत्री वही डर रहना
1: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना या मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मैं गैप गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं जंप कर जाते हैं। मैंने कहा गोल्टी ये क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, भाग भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। मैं बड़ी टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरे मैंने।
0: ऐसी मेरी सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता

राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन उनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा रहता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे

कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पुठे आदमी जिन्हें की पापा जी कहा जा रहा था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक हिदाय शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब हिदाय शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक मुहैया कर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो ट्रैक दिया करते थे हिदाय शर्मा जी के कलेक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है यानी करियर की जो शुरुआत है एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम कर रहा। ये बात अलग है कि आज हिदाय शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को।

राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन बल्कि क्या अक्सर वो इस बात पर और क्या कहते थे कि राज कपूर जो है वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने मोबाइल चलाया करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने की गुण ज्यादा है, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं न कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

घटना कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सके। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी पत्ती बुझाने के लिए

और साथ अपने साथ साथ सफलता का सवाल लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार है संजय पुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद साले ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद साले ने लिखी।

फिल्म की नायिका भी यही थी निम्मी और कैमरामैन राजू करमरकर। राजू करमरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने, इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था। आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हैं। इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था

0: बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता वाली, सोहैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भौरा, सरगम और भौरे में
1: मुझे सच्ची सच्ची बता दूँगा कि कब दिल में समाये थे।

अक्षय की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रही और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, किरार शर्मा, नितिन बोस, बिमल राय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है, लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को रांग कर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की चार फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना, और इन चारों ही फिल्मों में उनके

नाना साहब राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, यही कहिए कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की 3 फिल्में आई, धुन, आती

की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी, लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आह ही साबित हुई।

सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया

0: हमारा आप लेंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ
1: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती

आगे सुनाई छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उस रोज गाया था उसने एक गीत, प्यार हो मेरा बहार हो मेरा। उसके इस गीत से बहार आ गई थी जिंदगी में, पर अचानक वक्त के धूल भरी आंधी चली और जिंदगी के मन के गए कुछ मोती टूट कर बिखर गए। जिंदगी उदास गीतों का सिलसिला बन गई।

और इश्क का मिलन होता है तो सुधर जाती है जिंदगी। इश्क में जब दिल जकड़ जाता है तो जिंदगी की परेशानियां आसानियों में बदल जाती है। लेकिन जिंदगी कभी एक सुर में नहीं गाती। जिंदगी के धार पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं। जिंदगी के समीकरण डगमगाए और प्रेम राग उदास राग में बदल जाता है।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। बदलता है प्रेम का मौसम, काली घटाएं घिराते हैं, जिंदगी की राहें भटक जाती हैं, कांटों का लंबा सफर बन जाती है जिंदगी। मोहब्बत भरे बातों में तकरार के अल्फाज खास हो जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं। जिंदगी मोहब्बत और तकरार से मिलकर बनती है, पर जिंदगी तभी लुभाने लगती है जब मोहब्बत भरे लम्हों से आबाद होती है जिंदगी। दो दिल रूठते हैं तो प्यार का मौसम उदास हो जाता है।

जिंदगी की हर कहानी में उसका नाम लिख दिया था। डायरी के हर पन्ने पर उसी की बातें दर्ज हो गईं। दुनिया के बहुत सारे रास्तों पर चलकर देखा, सबसे खूबसूरत रास्ता वही लगा जिस पर पड़े थे उसके कदम। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली, उसके कदम तेज हो गए और रास्तों के बजाय हवा में उड़ने लगा। बस उसी रोज से जिंदगी के राह में कांटे बिछ गए।

आशियों के गांव में एक आशिया बनाया था। मन्नतों के धागे से गूंथी थी प्रेम की माला। मुश्किलों की आंधी ना आ जाए ये सोचकर सदका उतारा था। नीली आंखों की नदी में सुनहरे ख्वाब पनाह पाते थे। पर एक रोज काली घटाएं घिरी, नैनों में नदी तराई, बरसने लगे नैन, होठों पर उदासी की बूंद ठहर गई।

αυτά, λοιπόν, σου λέει στην Ματσόλκηση, με δικαλισμή ρωτιά. सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन दाखिल प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगे। समिति एक मार्च लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है

0: के मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली है। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मासेकेले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति श्री नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सिजदेवा और अरुण पिल्ले के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जयपुर विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रूपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माही, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news run by Aris Raghu.

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and SP Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood,

0: last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स है, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
1: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में क्या या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखे तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, ढेर सारे से पशुपालन से पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुले, बी
2: कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े न हो। जी
3: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड। द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर areas where the government you feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
4: You know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. Yes. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
3: Yes.
4: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be at the data for the entire world.
3: Yes.
4: See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains.
3: Yes.
4: You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nashik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support.
3: Right.
4: For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know,
3: yes,
4: that is also the big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, we have also seen in this budget, initiative has been that, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that if, you know, it focuses on low productivity districts.
3: Yes.
4: So focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta.
3: Yes.
4: Impulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
3: Right.
4: So that the future is natural farming, we can have chemical-free agriculture, and towards

0: that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes, Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सके।
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मस्ती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही, तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई। ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रूपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखे तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हाईवे सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही है और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैल गए, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ लेता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिला,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल
2: जाए, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी

0: उसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: अब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रूपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रूपए मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल तो जैसा कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी एंड हैव बीन सक्सेसफुल?
2: सी, द फार्मर नीड्स करेक्ट इनपुट्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस एंड आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ही नीड्स अ फाइनेंशियल हेल्प टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंडिचर्स, देन आफ्टर द प्रोड्यूसर्स harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his value. So towards this end, what have you revised? Keeping into account the rise in the input cost, and as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sipsa was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-naam, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there are like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, cost by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये सरकार के आने के साथ ही

0: नया मंत्रालय बना और सहकारिता मंत्रालय, जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वो कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको पैसे जोर से दिया। आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% पहले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के बीच दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है। और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती है। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपए, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। वह सोचिए एक साल का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। अब पिछली सरकारों का कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानते ही नहीं थी, उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final product, in that whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology, and do not forget particularly irrigation.

0: rains, and now with the last budget, they've got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. Hmm. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up.
1: Hmm.
0: It will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, set canals,
1: hmm.
0: and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments.
1: Hmm.
0: They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is, there is not one single aspect that is neglected. And our farmer boasts that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention.
1: Yes.
0: Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana.
1: Oh.
0: This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops, you know, with the past acreage, and the, what is the condition of the crop. So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. तो मिस्टर सिंह, जैसा इन्होंने कहा मिस्टर अय्यर ने, कि एक परिकल्पना है कि हम जो विश्व है उसको भी एक्सपोर्ट करें. हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गए हैं. 2014 से देखें तो 37% बढ़े हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, $51 बिलियन हो गए हैं. और इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. तो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं, जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है, इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स, यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को, और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बनाए, सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तभी मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनका सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशन को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशन के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन को मंजूरी मिली है. तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में

0: लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट है। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसका अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज। दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward, using the strengths of the opportunity?
2: Well, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, you talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of the high-value crops and some of the crops you mentioned. And because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export-oriented in our production. That is very, very important because we have a rich agroclimatic, you know, zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, he mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses. And the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.